0: इतराता फिरता है, करके पाप तू ए मूर्ख क्यों इतराता फिरता है, क्यों मजलूम पर जुल्म कर गर्त में जा गिरता है। समझता है खुदा खुद को, बेजुबा को सताता है, क्यों खोदता है कब्र अपनी, खुद ही कफन अपना सिलता है। गुजरते वर्ष के साथ गुजरता वक्त गुजर जाए, गुजरते वर्ष के साथ गुजरता वक्त गुजर जाए, गुजर गया जो वक्त ना फिर वो लौट कर आए। उठाकर हाथ अपने सजदे में झुकाकर सर अपना, उठाकर हाथ अपने सजदे में झुकाकर सर अपना, दुआ करो अब के बरस खुशियों भरा हर एक पल आए, दुआ करो अब के बरस खुशियों भरा हर एक पल आए। धन्यवाद।
1: मैं शर्मा जी तो बाद एक मैं होर गुस्सा की करने का एक साडे शायर ने फिरोजपुर तो कमल दास जी वो भी अपनी एक रचना लेके हाजिर हो रहे ने। कमल दास फिरोजपुर जी थोड़ा दुआबा रेडियो दे हफ्तावारी कवि दरबार दे विच निघा स्वागत है जी आया।
2: जिंदगी

साथ सफर का रूठे ना, रूठे अगर तुम ना लेना। साथ सफर का रूठे ना, रूठे अगर तुम ना लेना। मौका हरगिज ना तू गवाना, हंसते गाते दिन बिताना। हाँ जिंदगी ये कहेगा तू गाना, हंसते गाते दिन बिताना। एक दिन ऐसा आ जाएगा जिस दिन तू चुप हो जाएगा। एक दिन ऐसा आ जाएगा जिस दिन चुप तू हो जाएगा। इस बात को भूल न जाना, हंसते गाते दिन बिताना। हाँ जिंदगी ये कहेगा तू गाना, हंसते गाते दिन बिताना। ला ला ला ला ला ला ला ला।

रख दे ख्याल पूरा सिरी ते कमीन दा, रख दे ख्याल पूरा सिरी ते कमीन दा, कातों है नी।

रात तक करना आंदा, अद्धी रात तक करना आंदा, सप्पां दियां सिरियां नप के सौंदा, अद्धी रात तक करना आंदा, सप्पां दियां सिरियां नप के सौंदा। अज हंजू केर रोवे, अज हंजू केर रोवे, अन्न दाता संसार दा, आजो पुत्तो आजो बापू तरने च वाचा मारदा, आजो पुत्तो आजो बापू तरने च वाचा मारदा। तेरा मेरा करना छट दो, धर्मा पिछे लड़ना छट दो, तेरा मेरा करना छट दो, धर्मा पिछे लड़ना छट दो। किंज पैने फिर किते भंगड़े, किंज पैने फिर किते भंगड़े, की मतलब हो विसाखी दा, किंज रुआब हंडाउणा दूजे हाथ फड़ाई लाठी दा, किंज रुआब हंडाउणा दूजे हाथ फड़ाई लाठी दा। वास्ता पंजाबीओ, वास्ता पंजाबीओ, मां धरती दे दुलार दा, आजो पुत्तो आजो बापू तरने च वाचा मारदा, आजो पुत्तो आजो बापू तरने च वाचा मारदा। बस करो हुण होर नी सहना,

0: नहीं सेवा केंद्र ने गदार उठो ओ जवान दलियो बापूता नहीं रहे ने पकार लड़नी लड़ाई केड़ी तुसी ए जान लो लड़नी लड़ाई केड़ी तुसी ए जान लो हक को भी जिड़ा उस वैरी नू पछाण लो कि देणगे ए दस कलाकार उठो ओ जवान दलियो बापू धरने च रहे ने पुकार लहरां बण उठो तुसी तख्त गिरा दियो लहरां बण उठो तुसी तख्त गिरा दियो लहू पीणी दा दिल्ली दा लहू पीणी दिल्ली दा दिल ही हिला दियो लहरां बण उठो तुसी तख्त गिरा दियो लहू पीणी दिल्ली ए दिल ही हिला दियो लिखू कमल जरूर साडी वार उठो ओ जवान दू लियो बापू धरने च रहे ने पुकार उठो ओ जवान दो लियो हाकमां ने कीती हुण पूरी ए तैयारी हड़प्पणे नूं फिरदे ने जमीन तुहाडी सारी उठो ओ जवान दो लियो बापू धरने च रहे ने पुकार उठो ओ जवान दो लियो। रेडियो दे प्यारे स्रोतियो साडी काम महफल दे अखीर दे विच पेश हो रहे ने हरप्रीत सफरी जी जिहड़े साडी काम महफल दे विच आउंदे रहिंदे ने ते ओह पंजाबी दे प्रसिद्ध शायर चरण सफरी जी दे पोतरे हन। अज कल ओ हुशियारपुर विखे रह रहे ने ते एक ऑनलाइन जिहड़ा गायकी दा मुकाबला चल रहा है जिस मुकाबले दा नां है किस्मत दे सितारे। ये वीडियो जिहड़ा मुकाबले जिहड़े आ वीडियो ते हुंदे ने ते गायकी दा मुकाबला है किस्मत दे सितारे। इस दा फाइनल जिहड़ा हो चुका है फाइनल दा अजे रिजल्ट नहीं आया ते इस दा रिजल्ट जिहड़ा 15 अक्टूबर नूं आना आ ते इस फाइनल दे विच जिहड़ा आ इस ने हिस्सा लिया होया है। असीं आस करदे आ कि इह चमकदा सितारा जिहड़ा आ किस्मत दा सितारा बन के सामने आए ते अज ओह साडी काम महफल दे विच इक गीत लैके हाजिर हो रहा है हरप्रीत सफरी जी। आयां नूं जी हरप्रीत सफरी जी।
1: हैलो दोस्तों, सत श्री अकाल, मैं तुहाडा अपना गायक हरप्रीत सफरी। दोस्तों दुआबा रेडियो सारी टीम का बहुत धन्यवादी हाँ ते नाल ही साडे सतिकारयोग हरवंश सिंह जी का भी बहुत धन्यवादी हाँ जिन्हां ने आप रब वर्गे सोतियां दे रूबरू होण दा मौका दिता। दोस्तों अज मैं गीत पेश करन जा रहा हाँ, एक किसानां दे दर्दां नूं बयान करदा होया गीत है।

जेड़ा कपड़े करे करोड़ा बिच बस ओनू लीडर मन देने। पेन बैंक च दो रुपया दा जेनू तागे दे नल बन देने। जिथे रब कर संगता जुतियां नू, जिथे रब कर संगता जुतियां नू रख सिर।

ओ भी बसण पदौड़ सदा एक के ओ भी बसण पदौड़ सदा जिन रखियां सोचा उचियां।

पै गईया ने मेरे पल्ले सजना दर्द जुदाइया सबे एक पासे मेरे ऐब खलोते दूजे पासे खुदाइया सबे पै गईया ने मेरे पल्ले सजना दर्द जुदाइया सबे एक पासे मेरे ऐब खलोते दूजे पासे खुदाइयां सबे चलिए ता एक कर्म कमानी कड के कोई वैर जावी चलिए ता एक कर्म कमानी।

मैं सदा तेरे नादार उड़ा रेहानी निकल गया दार उड़ा मंजिल दे वाले चले सी नी मंजिल दा हुन राए थोड़ा मैं सदा तेरे रादा डोड़ा रेहानी निकल गया दा रोड़ा मंजिल दे ना मंजिल दे वाले चले सी नी मंजिल दा हुन राए थोड़ा मेरे कुप हो नेरे नू

दिन रात मेहनता कर दे हां, मजदूर पक्की सरकारां होण जे फिर खुदकुशियां क्यों कर दे हां। कुलवंत हक्कां नूं समझे ना कोई, कुलवंत हक्कां नूं समझे ना कोई, ताइयों हक

करके मैनू याद, रोया करेंगी तू, हाय करके मैनू याद। बदलां दे विच, बदलां दे विच चन्नी जदों मुस्कुराएगा, बदलां दे विच चन्नी जदों मुस्कुराएगा, चेहरा मेरा फेर तैनू